0: बौटी अकल दी मोटी पर उम्र दी छोटी। मैं क्या बौटी जी, चलो थोनू सिन में ही ले चलिए।
1: खबरदार जी तू मेनू वोटी आख्या ओके
0: ना ते और मैं तेनू बेबे आखा। तेरा साडा व्याह होया, लम्मिया रकमा खर्चिया ने सौ

चुपके से आपकी धड़कन में उतर जाएंगे, राहें उल्फत में आज हद से गुजर जाएंगे। टूट के आप हमें इस कदर जो चाहेंगे, हम तो बाहों की पनाहों में पिघल जाएंगे।

ठहरा के मुझ पे नजरें, उफ तेरा मुस्कुराना, अंगड़ाई लेके ऐसे दिल को मेरे लुभाना। तू ही बता आखिर कैसे संभालूं ये दिल, लगता है आज मुझको कर दोगी तुम दीवाना।

को देखूं हर एक अदा निराली, लहरा के जुल्फ तूने मुखड़े पे जब ही डाली, खिलने लगी है जालिम तेरे लबों की लाली, अब दूर तुझसे रहना होने लगा है।

एकुमकार सतनाम कर्तापुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद इसनू मूल मंत्र कहा जाता है। श्री गुरु नानक देव जी ने उस अनंत परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन इस मूल मंत्र विच दे दिता है। इस दे अखरी अर्थां नू समझिए। एक परमेश्वर एक है, दो जां तीन नहीं। ओंकार रजो तमो सतो गुण तो परे परमेश्वर सर्वव्यापक है। सत नाम उसका नाम सच है। कर्ता पुरख इस सगल जगत का कर्ता परता वो प्रभु आप ही है। निरपाओ परमेश्वर आप ही जदों लीला रच रहा है आप ही वो जीव जगत हो गया। जद उस तो अलावा होर कोई है ही नहीं तो फिर उसनु डर किसता। निर्वैर आप तो आपनु वैर भी संभव नहीं सो प्रभु निर्वैर है। अकाल मूरत परमेश्वर काल समय तो बाहर है। काल विच जन्मी हर मूरत मरणशील है। परमात्मा दा रूप अकाल है समय तो बाहर है। अजोनी प्रभु किसी भी जोनी विच कदी भी नहीं आवेगा। जिसका जन्म कदी ना होवेगा ऐसे परमेश्वर में अजोनी क्या जाता है। सैभं परमेश्वर स्वयं प्रकाश है। गुर परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है चेतन स्वरूप है। प्रसाद प्रसाद तो भाव है आनंद रूप। जिसने भी ज्ञान रूपी गुरु दे जरिए उस परमेश्वर नु जानिया वो आनंदित हो जाएगा। मूल मंत्र विच साधक वास्ते साधना दा राह भी है सुझाव भी है और अंतम रूहानियत दी मंजिल विच जाके जो अनुभूति होवेगी वो भी इसी मंत्र विच है। इसी कारण इसनू मूल मंत्र कहा जाता है। भावना एकाग्रता अते श्रद्धा नाल इस मूल मंत्र दा कीता गया जप साधक दे जीवन च शक्ति ते भक्ति नू लेके आवेगा।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

प्यारे शिव भक्तों, एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उसने संसार में मोह माया के बंधन में न जाने कितने पाप किए। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा, लेकिन हे प्रभु, तुम तो सबको क्षमा करते हो, मुझे भी क्षमा करना प्रभु।

0: नफ्सेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड ब्रेडफोर्ड 1।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 353.

0: के ऐन मुताबिक गुस्ले मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास, ब्रेडफोर्ड 7230 30।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-day सीरीज ऑफ इनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, 11th to 13th September 2026। लाइव चेंजिंग सेशंस फीचरिंग प्रोफाउंड टॉक्स, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY, on Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details call AK Basra, 07977201226, Mirdosh Kumar, 07899055525, Gurkirit, 07886-545970, Usha, 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chooza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274 733 732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.
3: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रैडफोर्ड 7230 30

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: No, sorry, mate.
5: No, we don't have that part.
4: Have you tried down the road?
6: We can get it in, but it won't be for a few days.
7: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply, subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
8: ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਓਹੋ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ।
9: ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
8: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕਲੈਂਡ, ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9, ਟੈਲੀਫੋਨ 01274 4889 35।

0: जेवर देखा था, इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा? केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी, नक्के नतीला है सिर्फ 2 पाउंड ना, कानस लाने ना 1 पाउंड, छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
4: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रैडफोर्ड 723030।
6: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए, सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
4: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call A.K. Basra, 07977-201226. Mirdosh Kumar, 07899-055525. Gurkirit, 07886-545970. Usha, 07931788-062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, आपकी चाहतों को, आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं। बन जाए आपकी ज़िंदगी खुदा की नेमतों और बरकतों से जन्नत, यही दुआ हम सुबह, दोपहर और शाम करते हैं। 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है। शहनाज मंसूर आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल कीजिए मेरा मोहब्बत बड़ा चाहतो बड़ा खुलूस की अता गहराइयों से। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज़ ने आप तमाम को खैरियत से पाया होगा। आपका पिछला हफ्ता और आपका आज का दिन अभी तक खैरियत से गुजर रहा होगा। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें और हमेशा तंदुरुस्त, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें और अपनों के साथ ज़िंदगी के मज़े लेते रहें, यही हमारी दुआ होती है सुबह शाम। आपके लिए हमेशा रही है और रहेगी आपके लिए। आपकी दुआओं के साथ आते हैं, आपकी दुआएं साथ लेकर जाते हैं। आज भी आपकी दुआएं हमें लेकर यहाँ आई हैं और खुदा ने एक बार फिर से हमें मौका दिया है मिल बैठने का, आपके साथ चंद थोड़ा सा वक्त गुजारने का, 2-3 घंटे गुजारने का वक्त आपके साथ हम गुजारेंगे। हमेशा की तरह आज भी यादों का सफ़र होगा, आप हमारे हम सफ़र होंगे जैसे कि हमेशा रहे हैं। हमेशा आप हमारा साथ निभाते हैं, हमारे सफ़र को खूबसूरत बनाते हैं, अपनी यादों को ताज़ा करते हैं, हमारी यादों को ताज़ा करते हैं। मिलजुल कर हम यादों को एक बार फिर से ताज़ा करते हैं खूबसूरत गीतों और खूबसूरत आवाज़ों के साथ साथ। हवा के दोष पर हमारी ये मुलाकात फ्राइडे को होती है 11 और 2 के दौरान। आज भी यही सिलसिला होगा, हिट ऑफ द आवर आप सुनेंगे और उसके फौरन बाद ब्रेक होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी यादों का जो सिलसिला है उसका सफ़र को हम जो है फिर से जारी करेंगे। आपके खूबसूरत पैगामात भी हम हवा के दोष पे नशर करेंगे, आपके दोस्तों तक, आपके प्यारों तक पहुंचाएंगे। आप जुमा की मुबारकबाद देना चाहें अपने नाम के साथ या अपनों के नाम के साथ, कोई भी हमारे पुराने सदाबहार गीतों से गीत उनके नाम करना चाहें तो आप आ सकते हैं। डेडिकेशंस के लिए हमारा नंबर है 01274306666। हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके तमाम चहेतों को, आपके अहलो अहबाब को, आपके हमसायों को, आपके बच्चों को, आपके बुज़ुर्गों को, आपके दोस्तों को अल्लाह पाक हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे और आपके उन तमाम रिश्तों को अल्लाह पाक नेमतों से नवाजे और उन तमाम बरकतों से नवाजे जिसमें राहत हो, सुकून हो, तंदुरुस्ती हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को खैर आफियत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। खुदा न खास्ता अगर आप में से आज कोई बीमार है, परेशान है, किसी मुश्किल में है तो हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको सेहत कामला और आजल अता फरमाए, आपकी मुश्किलात को आसानियों में बदले खुदा पाक और आपको दिली, ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी सुकून अता फरमाए। आप सबको एक बार फिर से सुबह खैर और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। बढ़ते हैं हिट ऑफ द आवर सुनते हैं और आते हैं उसके बाद आपके पास।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6, and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, बहुत ही खूबसूरत गीत है टॉक द आवर आपने सुना। आपको टाइम बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 17 minutes past 11। जी हाँ जी, 17 मिनट हो चुके हैं 11 बजकर। बढ़ते हैं, ब्रेक लेते हैं और आते हैं फिर ब्रेक के बाद।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: This is a message from Mercedes-Benz Vans in association with Sunrise Radio. Here's a number that should make you sit up. Vehicle downtime costs UK businesses an average of £1,172 per van per day. That's why Mercedes-Benz Vans created the Uptime Promise. From roadside assistance and extended service hours to real-time vehicle diagnosis and more, they have a range of advantages designed to keep your business moving. Mercedes-Benz Vans has got your back. Search Mercedes-Benz Vans today and discover their

तुम मुझसे रूठ जाओ ऐसा कभी ना करना, तुम मुझसे रूठ जाओ ऐसा कभी ना करना, मैं एक नज़र को तरसूं ऐसा कभी मत करना, मैं पूछ पूछ हारूं सौ सौ सवाल करके, मैं पूछ पूछ हारूं सौ सौ सवाल करके, तुम कुछ जवाब न दो ऐसा कभी न करना, तुम चांद बन के रहना मैं देखता रहूँगा, तुम चांद बन के रहना मैं देखता रहूँगा, किसी रोज़ तुम ना निकलो ऐसा कभी न करना, तुम चले जाओ जब भी देखूं तुम्हारा रास्ता, तुम लौट के ना आओ ऐसा कभी ना करना, मुझसे ही मिल के रोना मुझसे ही मिल के हंसना, मुझसे बिछड़ के जी जाओ ऐसा कभी ना करना।

आजा आजा तेरा इंतज़ार है। बहुत ही खूबसूरत दो गाना आप सुन रहे थे सनराइज रेडियो पे 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुन रहे हैं। पूरी दुनिया में 100.6 एफएम पे आप हमें सुनते हैं अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर और डीएबी के जरिए ब्रैडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीज, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन केन्स और उसके अलावा अब आप हमें सुनते हैं वेस्ट लंदन में भी। जी हाँ जी, आपका अपना सनराइज रेडियो है। इसके अलावा आप बहुत से रास्ते हैं सनराइज़ को सुनने के, 24 घंटे आप सुन सकते हैं अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाकर और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे आप डाउनलोड करें तो 24 घंटे हम आपके साथ साथ हैं सनराइज रेडियो पर। मैं हूं शहनाज मंसूर और आपके साथ साथ रहूंगी दोपहर 2 बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ, पुरानी आवाज़ों के साथ और पुराने पुराने गीतों के साथ। यादों को ताज़ा करने आए हैं आपके संग मिलकर और मिलजुल के ये सफ़र तय करेंगे हम और इसके इख्तिताम तक हमें आपका साथ चाहिए हमेशा की तरह। आपकी दुआएं चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आपका जो साथ होता है ना वही इस सफ़र को खूबसूरत बनाता है। और मुझे उम्मीद और यकीन है कि आज भी आपका साथ मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा और आपकी दुआएं भी। आपकी महकी हुई ज़ुल्फ़ को कहते हैं घटा।

सी तारीफ को नियत का खलल कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत दो गाना आप सुन रहे थे 103.2 FM पे। अब बारी आती है एक बार फिर से ब्रेक की, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं, आते हैं आपके पास ब्रेक के बाद।

अपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। बहुत ही खूबसूरत दो गाना था जिसे आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में। और मैं हूँ शहनाज मंसूर, आपके साथ साथ हूँ दोपहर 2 बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ। आपके डेडिकेशंस भी होंगी अगले घंटे में 12 बजे की खबरों के बाद। फिलहाल तो हम आपकी यादों को सिर्फ ताज़ा कर रहे हैं, आपको बस सुना रहे हैं और थोड़ी सी वो कहते हैं ना हिंट दे रहे हैं कि क्या कुछ आने वाला है इस प्रोग्राम में। आप तमाम का बेहद शुक्रिया जो कि प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, जिन्होंने हमें मैसेजेस किए। आपके मैसेज पढ़े बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप प्रोग्राम सुन रही हैं, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तमाम सामेन को और सनराइज़ की तमाम टीम को जो बहुत बहुत मुबारकबाद दी है जुमा की और अस्सलाम वालेकुम कहा है, दुआएं भेजी हैं, बहुत शुक्रिया हिना शौकत आपका। और मिस्टर हुसैन आपका मैसेज भी मिला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप भी प्रोग्राम को सुन रही हैं हमेशा की तरह, आपने ढेरों दुआएं दी हैं और आपने कहा है कि सनराइज़ की मैनेजमेंट को और सनराइज़ के तमाम स्टाफ को उनकी नई लॉन्च पर जो कि लंदन में अब शुरू हुई है पिछले हफ्ते से, उसकी मुबारकबाद पेश की है और ढेरों दुआएं दी हैं सनराइज़ रेडियो को। और इसके अलावा आपने सभी को जुमा की मुबारकबाद भी पेश की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं सनराइज़ रेडियो को हमेशा की तरह 24 घंटे आप सुनते हैं जो DAB के जरिए भी, ब्रेडफोर्ड, कीसली, इल्कले, स्किप्टन, लीड्स, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एकरिंगटन, मिल्टन कीन्स में भी और वेस्ट लंदन में भी सुन पाती है हमारी आवाज़। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है, यादों का सफ़र है, आप हम सफ़र हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमेशा की तरह आपके साथ साथ इस सफ़र को आगे बढ़ाना। और आपका साथ हमेशा की तरह बहुत प्यारा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का जो कि प्रोग्राम को सुन रहे हैं। आप तमाम के लिए होंगे आने वाले गीत।

अरे मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी से लिया गया था और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपने सुना हवा के दोष पे सनराइज रेडियो पे 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे सुन रहे हैं आप हमें पूरी दुनिया में 100.6 एफएम पे आप सुनते हैं अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर और कालडरडेल के इलाके में, इसके अलावा ब्रेडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीज, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में आप सुन रहे हैं। मैं हूं शहनाज मंसूर और आपके साथ साथ हूं दोपहर दो बजे तक पुराने सदाबहार गीतों के साथ, पुरानी आवाज़ों के साथ, आपकी यादों के साथ, अपनी यादों के साथ। सदाबहार आवाज़ें हैं, आपकी मनपसंद आवाज़ें हैं जिन्हें आप हमेशा सुनते हैं और हमेशा सुनने की चाह रखते हैं। आपकी मनपसंद आवाज़ें हम आपके नाम करने आए हैं। आपको भी जिस आवाज़ में गीत सुनना हो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी मनपसंद आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे 103.2 एफएम पे। और डेडिकेशंस के लिए हमारा नंबर है 01274306666। शुक्रिया अदा करूंगी आपने प्यारे से छोटे भाई, जी हाँ जी, नदीम मंसूर, आपका बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप हमारे हम सफ़र हैं, हमारे साथ साथ हैं, अच्छा लगा आपका साथ, आपका खलूस और आपकी दुआएं हमें मिली, उसके लिए आपका बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ ने आप आवाज़ में आपने अपने तमाम दोस्तों को दुआएं भेजी हैं, जुमा की मुबारकबाद पेश की है, आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपको हम गीत भी सुनवाएंगे अगले घंटे में और आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों को जुमा की और बहुत बहुत मुबारक और दुआएं आपकी जानिब से। हीरा खान जी, आपकी कॉल मिस होगी, माजर चाहती हूँ, लेकिन आपकी हाज़िरी हमने लगा दी। हम जानते हैं कि आप अपने दोस्तों को हमेशा की तरह सलाम और दुआएं भेज रहे हैं और उनके लिए गीत सुनना चाहते हैं। जुमा की मुबारकबाद भी आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों को, आपके लिए गीत भी हम ज़रूर लगाएंगे अगले घंटे में। वाजिद भाई, आपकी कॉल भी मिस होगी, माजर चाहती हूँ, अभी बहुत वक्त है हमारे पास, अगर आपके पास वक्त है तो ज़रूर आइएगा, आपसे ज़रूर बात करेंगे इंशाल्लाह।

0: भी छूटे ना और इश्क का धागा टूटे ना। बहुत ही खूबसूरत दो गाना था हिट ऑफ द आवर में आपने सुना। प्रोग्राम के दूसरे घंटे का आगाज़ हो चुका है। आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, जी आयन कहते हैं, गुड आफ्टरनून और जुमा की बहुत बहुत बहुत मुबारक। आज ऐसा है कि आज फिर ऐसा हो रहा है कि जो भी साथी आ रहे हैं उनकी कॉलें मिस हो रही हैं। वाजिद भाई हडर्सफील्ड से आपने दो तीन बार किया, आपकी कॉल मिस होगी। अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से आपने भी कॉल की, आपकी कॉल भी मिस होगी, माजर चाहती हूँ। हीरा खान जी आपकी भी दोबारा कॉल मिस हो गई, बहुत बहुत माजरत आप सभी से। अगर आप दोबारा फ़ोन करें, वाजिद आप ऑनलाइन हैं, थोड़ी देर में जो ही मैं ऑफ एयर हो आती हूँ तो फिर आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि हमारे प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। हमने आपके नाम अपनी लिस्ट में शामिल कर दिए हैं, आपके लिए गीत भी होंगे और आपकी जानिब से आपके दोस्तों को हम आपके दुआ सलाम भी पहुंचा देंगे हवा के दोष पर। सुनते रहिएगा, साथ साथ रहिएगा, अभी तक साथ निभाने का बेहद बेहद बेहद शुक्रिया। टाइम बताते हैं आपको तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 9:12 और इस घंटे में आपकी डेडिकेशंस होती हैं और आपके पैगाम भी होते हैं, तो शुरू करेंगे वो सिलसिला आपके नामों के साथ साथ, आपके गीत भी आपके नाम करेंगे।

तो जी हाँ जी, वादे के मुताबिक प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इससे पहले के ब्रेक आ जाए। ब्रेक को भी आने में चंद मिनट बाकी हैं, तो जल्दी से एक गीत हम जो है वो आपके नाम करते हैं। सबसे पहले आज हमें मैसेज मिला था हिना जी आपका, और मिस्टर मिसेज हुसैन आपके मैसेज भी मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों के नाम करते हैं ये आने वाला गीत लता की खूबसूरत आवाज़ में। सदाबहार गीत है, मुझे उम्मीद और यकीन है कि मिस्टर मिसेज हुसैन आपके साथ साथ हमारे सामीन को भी ये गीत अच्छा लगेगा। और हिना जी आपकी जानिब से ये गीत शौकत के लिए और एजाज के लिए और उस्मान के लिए है और हमारे तमाम सामीन के लिए जो भी इस वक्त सुन रहे हैं और तमाम बेटियों के लिए ख़ास तौर पर।

बबुल तेरे बागान दी मैं बुलबुल, तुझे कौन सा गीत सुनाऊं। बहुत ही खूबसूरत गीत था जी। हाँ जी, जो बेटियां होती हैं वो तो अपने बाप की, अपने माँ बाप के महलों में उनके बागों की चिड़ियां होती हैं, बुलबुलें होती हैं। बहुत ही रौनक होती है बच्चों के साथ, बेटियों के साथ। रहमत हैं खुदा की, तो बेटियां तो सभी को बहुत प्यारी होती हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत था, थोड़ा उदास था लेकिन बहुत ही प्यारा गीत था। मिस्टर मिसी हुसैन, आपको बहुत अच्छा लगा, आप ही के लिए था। और मुझे उम्मीद है हमारे सामीन ने भी इस गीत को पसंद किया होगा। ब्रेक लेंगे और आते हैं ब्रेक के बाद।

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
3: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.
4: Sunrise Radio, Sunrise.
5: तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सस्ते देना। डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा, बागों में बाहर है? गर्मियों के निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: है,
1: अरे पापा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है?
2: बहुत ही खूबसूरत दो गाना था जिसे आपने सुना 103.2 FM पे और www.sunrisej.fm पे आप सुन रहे हैं पूरी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का, जो कि कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आपके कॉलें मिस हो रही है, पता नहीं क्या वजह है, या आप में थोड़ा सब्र नहीं है, आप तो इंतज़ार नहीं कर पाते, या मैं जो वो कहते हैं कि थोड़ी स्लो हूँ बस कुछ तो है, गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कॉलें मिस हो रही है, मैं आप सबसे माजरत चाहती हूँ। जी हाँ जी, तमाम भाइयों से जिन्होंने कॉल्स की और मैं बात नहीं कर पाई। वाजिद, आपने दो तीन बार ट्राई की, आपसे भी बात नहीं हो पाई, माजरत चाहूँगी। और हमारे मोहतरम भाई फ्राइजिंग हॉल से आपने भी कॉल की, अब्दुल कय्यूम भाई आपकी भी मिस हो गई, और हीरा खान जी आपने भी दो बार कॉल की, मिस हो गई, मैं आप सभी से माजरत चाहती हूँ। लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा, हम आपसे ज़रूर बातें करेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ जी,

अगली डेडिकेशंस की जानिब बढ़ते हैं। ये प्यारा सा गीत हम नाम करना चाहेंगे अपने छोटे से, जी हाँ जी, बहुत ही प्यारे भाई नदीम मंसूर भाई, आपके नाम करना चाहेंगे, और अपनी प्यारी सी बहन आदिबा जी, आपके नाम करना चाहेंगे। आप खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? आपकी खैरियत हमें मालूम हो गई हमारे बेटे नदीम मंसूर से कि आप थोड़ी मसरूफ़ हैं, कोई बात नहीं, आप ठीक रहें, खैरियत से रहें, खुश रहें जहाँ भी रहें, और अपनी फैमिली के साथ हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और नदीम मंसूर, आपका बेहद बेहद शुक्रिया, अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से आपने हमारा दिल बहलाया, हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये आने वाला गीत आपके नाम करेंगे, अपनी प्यारी सी बहन दीपा जी आपके नाम करेंगे, और अपनी प्यारी प्यारी बहन जी हाँ जी हाजरा जी के नाम करेंगे, सादिया जी के नाम करेंगे, शाजिया जी के नाम करेंगे, और परवीन भैना के नाम करेंगे, और जो भी आपके साथ साथ सुन रहे हैं उन तमाम के नाम करेंगे ये प्यारा सा गीत। और मुझे उम्मीद और यकीन है कि ये गीत हमारी सी प्यारी सी बहना नसरीन जी आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी तमाम टीम, समीना जी हैं, फरजाना है, शकीला है, और जूबी हैं, और आपके साथ साथ नाइला भी हैं, नौरिन भी हैं, और इसके अलावा शीला भी हैं, आप तमाम के लिए ये प्यारा सा गीत।

सुना सुना है जहां जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे बतला जा। बहुत ही खूबसूरत गीत और प्यारी सी आवाज़ दादा जी की आवाज़ में, ये प्यारा सा गीत आपने सुना। और अब गीत नहीं लगाएंगे क्योंकि ब्रेक आने वाली है। ब्रेक सुनते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे।

मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। बहुत ही खूबसूरत गीत और मोहम्मद रफ़ी की बहुत ही मीठी और प्यारी सी आवाज़ में ये गीत आपने सुना 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुन रहे हैं पूरी दुनिया में। शहनाज मंसूर आपके साथ साथ है दोपहर 2 बजे तक, आपके डेडिकेशंस के साथ, आपके पैगामात के साथ और खूबसूरत खूबसूरत गीतों के साथ। आप तमाम के साथ का, प्यार का, दुआओं का बेहद शुक्रिया। जिनसे बातें हुई उनसे आधी मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा आपकी खैरियत जानकर, और जिनकी कॉल मिस हो गई उनसे माजरत, अफसोस हुआ कि आपसे बात नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, आपके नाम हम गीत ज़रूर लगाएंगे, हम गीत लगाएंगे हीरा खान जी आपके नाम, आपकी तमाम टीम के नाम, जो भी दोस्त आपके सुन रहे हैं उन सभी को हीरा खान की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और जुमा की बहुत बहुत मुबारक। आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम अगला गीत हम करने जा रहे हैं, तारिक जुल्फी के नाम, बाबा जानी के नाम, महबूब इलाही के नाम, मलिक इसहाक के नाम, अयूब चौहान के नाम, जावेद मीर के नाम, चौधरी आसिफ रियासत भाई के नाम, सुल्तान महमूद कराची वाले भाई के नाम, चौधरी फरियाद के नाम, सफीउल्लाह भाई के नाम, शकील भाई बर्लिन में उनके नाम, नवीद राणा के नाम, तारिक भट्ट के नाम, कियानी मुदस्सर भाई के नाम, परवेज़ ख़ान के नाम, आमिर शहजाद के नाम और जितने भी आपके दोस्त सुन रहे हैं उन तमाम के नाम ये प्यारा सा गीत। और यही गीत अब्दुल कयूम फ्राइजिंग हॉल से आपके नाम भी करेंगे इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको और आपके दोस्तों को अच्छा लगेगा। आपकी जानिब से तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। जीत कौर बहना आपसे भी बात हुई, बहुत अच्छा लगा, आज बहुत ही खुशी हुई कि आप बहुत ही आपकी हंसी सुनी कि जो हमारे कानों में आपकी हंसी की आवाज़ आई तो अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद आपको हंसते हुए सुना तो हमारा दिल भी खुश हो गया। अल्लाह करे आप यूं ही हंसती रहे, मुस्कुराती रहे और हमारे कानों में हमेशा आपकी हंसी जो है वो गुनगुनाती रहे, गीत गाती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का, आपके प्यार का और जितनी भी दुआएँ आपने हमें दी हैं उससे बढ़कर हम दुआएं आपके लिए करते हैं कि अल्लाह पाक आपको यूं ही सलामत रखे और आप इसी तरह अपनी फैमिली के साथ मज़े से जो ज़िंदगी है अल्लाह पाक से तो तंदुरुस्ती के साथ आपको अता फरमाए। तो जी हाँ जी, सलमा आगा की आवाज़ में ये गीत है। आप तमाम साथियों के नाम जो भी सुन रहे हैं इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हमारे सामीन भी इस गीत को एंजॉय करेंगे। नहीं, ये गीत तो हमने नहीं लगाना था।

ऐसा है कि बाज़ दफ़ा नींद अटक जाता है, आने का नाम ही नहीं लेता। जी हाँ जी, आ गया। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए।

को भी हमने मिटा डाला मगर फासले जो दरमियाँ थे रह गए। हाय, कभी कभी होता है इंसान कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन कुछ हो नहीं पाता, किस्मत की बात है। बहुत ही खूबसूरत गीत था, सदाबहार गीत और सलमा आगा का मोस्ट फेमस गीत था जिसे आपके गोशे गुजार किया इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपने भी इसे इंजॉय किया होगा। ब्रेक भी आन पहुंची है और टाइम चेक का भी टाइम है, तो क्या करें। जी हाँ जी, ब्रेक लगा दें पहले या टाइम बता दें। ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद फिर आपको टाइम बताएंगे और उसके बाद फिर क्लासिक गीत सुनेंगे। क्लासिक गीत तो वैसे भी हमारे प्रोग्राम के सारे क्लासिक ही होते हैं, तो ये क्लासिक गीतों का सिलसिला जारी रहेगा।

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: समथिंग न्यू इज कुकिंग एट जिना रेस्टोरेंट। Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

मिल गया मुझको सनम जिंदगी का बहाना, बहुत ही खूबसूरत गाना था। 103.2 FM पे आप सुन रहे थे और इसके अलावा आप सुनते हैं 100.6 FM पे कैल्डरडेल और वेस्ट यॉर्कशायर के इर्द गिर्द के इलाकों में। डीएबी के जरिए आप सुनते हैं ब्रैडफोर्ड, कीसली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नी, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में भी। मैं हूं शहनाज मंसूर, आपके साथ साथ हूँ दोपहर 2 बजे तक। प्रोग्राम का दूसरा घंटा जो है वो भी ख़त्म होने को आ रहा है, करीब करीब है, तकरीबन 10-12 मिनट बाकी हैं। आप तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और अपनी दुआओं से, प्यार से हमें नवाजा। आप सभी ने आपका बेहद शुक्रिया, आपके पैगाम और आपकी जो दुआएं हैं वो आपके दोस्तों तक हमने पहुंचा दी हवा के दोष पर। हमें यकीन है कि आप तमाम के दोस्त जो है इस वक्त सुन रहे होंगे सनराइज़ रेडियो को, और वाजिद भाई आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों को, आपकी तमाम टीम को जो है वो जुमा की बहुत बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपने अपने तमाम दोस्तों को जिनमें महबूब इलाही हैं, जावेद मीर हैं, चौधरी आसिफ रियासत हैं, चौधरी फरियाद हैं, सफ़ीउल्लाह भाई हैं, शकील भाई हैं, तारिक भट हैं, कियानी मुदस्सर हैं, परवेज़ ख़ान हैं और आमिर शहज़ाद हैं और जितने भी आपके दोस्त सुन रहे हैं उन सभी को अपनी दुआएं भेजी हैं और जुमा की मुबारकबाद पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का, यादआवरी का, दुआओं का, खलूस का और साथ निभाने का। आप हमेशा हमारे हम सफ़र होते हैं और आपके साथ साथ ही ये सफ़र आगे बढ़ता है बहुत खूबसूरती से। मुझे उम्मीद और यकीन है कि ये गीत आपको अच्छा लगेगा और यही गीत मैं नाम करना चाहूँगी अपने छोटे से भाई, जी हाँ जी, नदीम मंसूर भाई, आपके लिए भी, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप भी पसंद करेंगे।

0: दूसरा। ओ मेरे शाह खुबा, मेरी जाने जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में प्यार भरा गीत था। जी हाँ जी, अपने प्यारे हमेशा हमारे दिलों में होते हैं, कभी हमसे दूर नहीं होते। बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही प्यारी आवाज़ में आपने सुना। अब एक और गीत मुकेश की आवाज़ में आप सबके गोशे गुजार करते हैं, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप तमाम को अच्छा लगेगा। प्यारी सी बहना जीत कौर आपके नाम करना चाहेंगे, मिस्टर मिस हुसैन आपके नाम करना चाहेंगे, और नौरीन बहना आपके नाम करना चाहेंगे। आपकी जानिब से आपकी तमाम टीम के, कौसर के, नसरीन के, शीला के और समीना के नाम करना चाहेंगे, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप तमाम को और हमारे सामीन को ये गीत पसंद आएगा।
1: आपका ये बजा ही सही के हम

कौन सिफारिश जो करता हमारी, करता वो तुमको बता। बहुत ही खूबसूरत गीत शान की बहुत ही प्यारी और मीठी आवाज़ में, हिट ऑफ द आवर आपने सुना। प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में हम आन पहुंचे हैं। आपका खैर मकदम है जी आयन, खुश आमदीद, वेलकम एंड गुड आफ्टरनून। जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ आपने हमारा साथ निभाया पहले दो घंटों में, उम्मीद और यकीन है कि इस घंटे में भी आप यूं ही प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे हम सफ़र बने रहेंगे, हमारे साथ साथ रहेंगे पूरे दो बजे तक। आपके साथ का, आपके खलूस का और आपकी दुआओं का बेहद शुक्रिया, ख़ासतौर पर आपके कीमती वक्त का जो कि हम आपने हमें नवाजा। आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है कि आप अपने कीमती वक्त से मसरूफियत के बावजूद आप हमें फ़ोन करते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं और अपनी दुआओं से हमें नवाजते हैं, जो कि हमारे हमें बहुत चहेती होती है, बहुत अच्छी लगती हैं आपकी दुआएं। और आपकी दुआओं के सहारे ही हम यहाँ पर आते हैं और आपकी दुआएं लेकर ही यहाँ से जाते हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा है, आपकी दुआएं मिल रही हैं, आपका प्यार मिल रहा है, आपका बेहद बेहद बेहद शुक्रिया शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने बहुत ही मौसम, बहुत ही वो कहते हैं ना कि दिल अज़ीज़ अच्छे भाई हैं हमारे नईम बगदादी, जो कि लाहौर में मुकीम है, यहाँ ब्रेडफोर्ड में रहा करते थे कुछ अर्सा पहले, आजकल वो लाहौर में हैं, लेकिन वहाँ से भी अपनी दुआएं और जो है वो हमें भेजते रहते हैं और सलाम दुआ भी तमाम सामीन को भी और सनराइज़ की टीम को भी हमेशा याद करते हैं, उनके लिए भी दुआएं भेजते हैं। हमेशा हमारे दिलों में भी आप रहते हैं और आपके लिए भी हमेशा दुआएं हैं, आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए भी। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें। और जो आप हमें हर दफ़ा जुमा के रोज़ या हर महीना के शुरू में या कोई भी ऐसा मौका हो आप जाने नहीं देते, हर मौका पर हमें याद करते हैं और अपनी दुआओं से नवाजते हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि आपके दिल में अभी भी हमारे लिए बहुत इज्जत, बहुत एहतराम है और आप अपनी दुआओं में हमें याद रखते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला गीत हम आपके नाम करना चाहेंगे, आपके फैमिली के नाम करना चाहेंगे, नईम बगदादी भाई और आपके तमाम दोस्तों के जो भी इस वक्त सुन रहे हैं। और यही गीत, जी हाँ जी, मैं नाम करना चाहूँगी अपने प्यारे से भाई वाजिद भाई और इस फील में है, आपके नाम करना चाहूँगी। उम्मीद और यकीन के साथ कि आप इसे पसंद करेंगे। जीत कौर बहना, आपके लिए भी यही गीत, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा।

0: हाय अल्लाह, कैसे छुड़ाऊं परला पागल से पड़ा है पाला। बहुत ही खूबसूरत दो गाना था जिसे आपने सुना 103.2 FM पे। टाइम बताते हैं आपको,
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 16 मिनट्स पास 1। 16 मिनट हो चुके हैं 1 बजकर। ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज। चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
5: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

काहे बिंदिया लगाई, मैंने निंदिया गवाई और पिया को पसंद भी ना आई। बहुत ही खूबसूरत दो गाना आप सुन रहे थे 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे सुन रहे हैं हमें पूरी दुनिया में 100.6 FM पे अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर और कार्डनडेल के इलाकों में आप सुनते हैं। डीएबी के जरिए आप सुनते हैं ब्रैडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स और वेस्ट लंदन में भी। मैं हूं शहनाज मंसूर, आपके साथ साथ हूं। जी हाँ जी, हमारा और आपका साथ 2 बजे तक है, तकरीबन आधा घंटा या कह लीजिए कि तकरीबन 40 मिनट्स बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक साथ निभाने का और शुक्रिया अदा करती हूँ मिसेस हुसैन, आपका मैसेज दोबारा मिला, आपने कहा कि आप गीतों को एंजॉय कर रही हैं और उसके साथ साथ गर्मा गर्म चाय भी पी रही हैं, पिंक टी आपने कहा, आज हमने पिंक टी बनाई है, वाह जी वाह। बहुत मेहनत लगती है ना पिंक टी बनाने में, और आज आपका मन चाहा और आप मिलजुल कर बैठे हैं और पी रहे हैं, तो खूब इंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इनविटेशन का और यादाबरी का भी और प्रोग्राम को एंजॉय करने का। मज़ा तभी आता है जब आप चाय लेकर बैठ जाएं, बिस्कुट आपके साथ हो या केक हो और फिर मज़े के गाने हों। ये आने वाला गीत भी आप ही के लिए होगा और जितने भी गीत होंगे आप ही के लिए होंगे। याद अफ्रीका और दुआओं का बेहद शुक्रिया।

0: कर दे।
1: कह दो कह दो, तुम जो कह दो, प्यार की हम तमन्ना जमा कर दें। बहुत ही खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे, और अब हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक।

आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे सुनते हैं पूरी दुनिया में 100.6 एफएम पे वेस्ट यॉर्कशायर और कालदेडेर के इर्द गिर्द के इलाकों में आप सुन रहे हैं हमें डीएबी के जरिए ब्रैडफोर्ड कीथली क्लिस्किप्टन Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burnley, Darwin, Nelson, Accrington, Milton Keynes और West London में आप हमें सुन रहे हैं. मैं हूँ शहनाज मंसूर, आपके साथ हूँ तकरीबन आधा घंटा हमारा और आपका साथ बाकी है. आप तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ. शुक्रिया अदा करती हूँ अपने मोहतरम भाई, जी हाँ जी, फ्राइजिंग हॉल से अब्दुल कयूम भाई, आपने दोबारा कॉल की और आपसे आखिरकार बात हो ही गई. बहुत बहुत शुक्रिया. आप बहुत आज जुमा का दिन है, मैं जानती हूँ आप बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी बहन को याद किया और आपने दुआओं में भी कहा कि आप याद करते हैं हमें. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का. ख़ास तौर पे मैं आपकी मशकूर और ममनून हूँ कि आप दुआओं में हमें याद करते हैं. आपने अपने तमाम दोस्तों को, सनराइज़ की टीम को और तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम कहा और जुमा की मुबारकबाद पेश की है और कोई अच्छा सा गीत आपने अपने तमाम दोस्तों के लिए सुनना चाहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपके नाम करते हैं और यही आने वाला गीत हम नाम करेंगे नदीम मंसूर भाई आपके नाम करना चाहेंगे, दीबा जी आपके नाम करना चाहेंगे और आपके साथ साथ यही गीत हम नाम करना चाहेंगे. आपकी प्यारी प्यारी बहनों के नाम भी करना चाहेंगे जिनमें हैं सादिया जी हैं, शाजिया हैं, हाजरा जी हैं और परवीन जी हैं और इसके अलावा नदीम मंसूर भाई हैं उनके लिए भी और जितने भी आपकी सहेलियां और आपकी फैमिली सुन रही हैं उन तमाम के लिए. आने वाला गीत उदास गीत है लेकिन बहुत ही पॉपुलर गीत है, सबका मनपसंद गीत है. जब भी इस गीत को लगाया जाए सभी इसे बहुत पसंद करते हैं. मुकेश की आवाज़ में है और हीरा खान जी आपके नाम भी करेंगे, अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से आपके नाम भी करना चाहेंगे, वाजिद भाई आपके नाम भी करना चाहेंगे. इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हमारे तमाम सामीन इस गीत को इंजॉय करेंगे. बहुत ही अरसा के बाद मैं अपने प्रोग्राम में लगाने जा रही हूँ, यकीनन आपको अच्छा लगेगा. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए.

0: कभी कभी
1: मैं जानता हूँ कि तू गैर है, मगर यूं ही बहुत ही खूबसूरत सा गीत था जिसे आपने सुना। आप जल्दी से चलते हैं, शमशाद बेगम की आवाज़ में ये पंजाबी का गीत सुनवाते हैं। वाजिद भाई आपके नाम करते हैं, मिसिस कौर आपके नाम करते हैं, और यही गीत हम नाम करेंगे नसरीन जी आपके, फरजाना जी आपके, शकीला जी आपके, अभी आपके, और रिजवाना जी आपके, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हमारे सामीन भी इस गीत को एंजॉय करेंगे। कच्ची कली सी नाजुक दिल मेरा कोई तुंग के एवे मरोड़ गया, जीवंदा रवे ओ जी सदके जेड़ा ला के मोहब्बत तोड़ गया।

0: रोण जोगे भी ना छड़िया तू अखियां दा पानी नचोड़ गया जिंदा रवे तू जी सदके। शमशाद बेगम की बहुत ही सुरीली बहुत ही खूबसूरत सदाबहार आवाज़ में ये सदाबहार गीत आपने सुना, ख़ास तौर पर मिसेस कौर आपके लिए पेश किया था। हम आपको भूले नहीं और भूलेंगे भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा जब भी आती हैं बहुत प्यार मोहब्बत के साथ आती हैं। और ऐसा है कि अब ब्रेक टाइम आन पहुंचा है, जल्दी से ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692378.
3: Official Media Partner Sunrise Radio.
4: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
5: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
4: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
5: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
4: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274 733732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। जी हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत गीत और लता जी का जो है बहुत ही मशहूर गीत है, सबका मनपसंद गीत है। थोड़ा उदास है लेकिन इसमें बहुत ही सच्चाई है कि जब भी आप अपनों से दूर हों तो ज़रूर मिली गले लगाइएगा और उन्हें से अपना प्यार ज़रूर बांटिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये मुलाकात आखिरी हो। तो यही था प्यार बांटना, प्यार देना और प्यार लेना। तो इसी तरह बातें हो रही थी प्यारी सी बहना जो हमारी मिसिस कौर, आपसे भी बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आती हैं, बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ आती हैं। सभी के लिए आपके दिलों में बहुत प्यार है, बहुत एहतराम है। और आपने बताया कि आप किस तरह कम्युनिटी में रही, बचपन आपका गुजरा और आपको सभी कम्युनिटियों से और सभी से बहुत प्यार है और सबकी इज्जत आप करती हैं और हमेशा सभी त्योहारों में सभी के साथ मिलजुल कर आप मनाती हैं और सभी को अपना प्यार और दुआएँ हमेशा देती रहती हैं। हमें भी आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आती हैं और बहुत ही प्यार लुटाती हैं तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे इंसान इस दुनिया में आजकल बहुत कम है, जो कि नई जनरेशन है उसमें तो किसी के लिए ना टाइम है ना प्यार है, बस अपने ही अपने काम में और बस अपना ही जो ग्रुप उनका होता है उसमें मशगूल रहते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि बच्चों को कुछ ना कुछ तहजीब हम सिखाएं अपने कल्चर के बारे में और कैसे जो है वो मिलन जुलन से प्यार मोहब्बत बढ़ता है और जो है वो सभी के लिए अच्छा होता है, कम्युनिटी के लिए भी अच्छा होता है, अपने शहर के लिए भी, मुल्क के लिए भी। तभी सुकून और अमन आता है जबकि सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के मज़हब की इज्जत करें, एक दूसरे से प्यार बांटें और कोई फ़र्क महसूस ना करें, क्योंकि आखिरकार हम सब एक इंसान हैं। और आपकी ऐसी ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें जो है हमारे दिल को मोह लेती हैं। आपसे बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। और आज फिर से कॉल मिस हो गई हमारे छोटे भाई, हमारे भांजे रुखसार भाई आपकी। आप बहुत देर से आए लेकिन आपने कोशिश बहुत की कहीं गैर हाजिरी ना लग जाए। अब देखते हैं कि गैर हाजिरी लगे या वो कहते हैं ना छोड़ दिया जाए, आपको माफ़ कर दिया जाए या कोई सजा दीजिए। नहीं, आपने कोशिश की इसलिए आपको छोड़ देते हैं, माफ़ करते हैं, क्योंकि आपने कोशिश तो की लेकिन हमारी वो ऐसा था कि हम बिजी थे दूसरी कॉल्स पे और आपसे बात नहीं हो पाई और आपकी हाज़िरी लग गई, हमने आपकी हाज़िरी लगा दी है, हमारे रजिस्टर में गैर हाज़िरी नहीं है। तो फिक्र ना कीजिए, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, आपकी कोशिश का शुक्रिया, आपका प्यार आपकी दुआएं हम तक पहुंच गई। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे बातें करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को आ रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि मैंने आपको टाइम नहीं बताया, टाइम बताते हैं। और एक और बात कि आज अजान की ब्रेक भी नहीं आई थी हमारे कंप्यूटर में, शायद रजिस्टर नहीं थी, वो नहीं आई। लेकिन अजान का जो टाइम था वो 1:40 था, तो किसी वजह से वो कंप्यूटर के हमारे सिस्टम में नहीं आई और हम नहीं चला सके, जिसके लिए माजरत है। तो मुझे यकीन है कि आप सब ने जोहर की नमाज़ की तैयारी कर ली होगी क्योंकि जोहर का टाइम तो हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जिन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की, प्रोग्राम में हाजिरी लगाई, प्रोग्राम में हमारे हम सफ़र बने, हमारा साथ निभाया, हमारे साथ साथ रहे, 3 घंटे हमें झेला और हमें अपने प्यार और दुआओं से नवाजा। आपकी दुआएं हैं जो हमें लेके आती हैं और आपकी दुआओं के साथ ही हम यहाँ से जाते हैं और फिर आने की उम्मीद पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, एक बार फिर से आपकी मशकूर और ममनून हूँ कि आपने हमारी हौसला अफजाई की, हमारे गीतों को पसंद किया, हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और तमाम सामीन को भी आपने दुआओं से नवाजा, आपका बेहद शुक्रिया। अब शहनाज मंसूर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने चाहा, ज़िंदगी ने वफा की, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर उम्मीद है कि आपसे मिलेंगे, ये तो अल्लाह के हाथ में है ना रिश्ते सलामत रहें, यादें बाकी रहें तो मुलाकातें होती रहेंगी सनराइज रेडियो पे। अगली मुलाकात तक आप सबका और हमारा अल्लाह ने के बाद, बाय फॉर नाउ एंड गुड आफ्टरनून, खुदा हाफिज़।

सतकाल एंड वेरी गुड डे। मैं हूँ शहनाज मंसूर, एक बार फिर आपसे खिदमत में हाजिर हूँ ढेरों दुआओं के साथ। दुआएं हमेशा जो आपको मिलती हैं वो बहुत ही कीमती असासा होती हैं, और मेरे दिल में भी हमेशा आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों पर अपनी रहमत का नुजूल हमेशा कायम और दायम रखे, और आप हमेशा खुशियाँ बांटते रहे और खुशियाँ समेटते रहे। आमीन।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

और आपकी मनपसंद आवाज़ों पर मबनी एक बार फिर से खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप आज भी मेरे प्रोग्राम को और इन गीतों को इसी तरह इंजॉय करते हैं जैसे कि हमेशा करते आए हैं और आपका प्यार और आपका साथ हमें आज भी ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक साथ निभाने का।

0: ये मैसेज मर्सिडीज बेंज वैंस की ओर से हैं, जो संदाज रेडियो के साथ मिलकर लाया गया। यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यूके में गाड़ियों के काम न करने, डाउन टाइम की वजह से बिजनेस को हर वैन के लिए रोज़ाना औसतन 1172 पाउंड का नुकसान होता है। इसलिए मर्सिडीज बेंज वैंस ने अप टाइम प्रॉमिस शुरू किया है, रोडसाइड असिस्टेंस और ज़्यादा समय तक सर्विस की सुविधा से लेकर रियल टाइम में गाड़ी की खराबी का पता लगाने और भी बहुत कुछ। इनकी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आपके बिजनेस को बिना रुके चलने में मदद करती हैं। मर्सिडीज बेंस वैंस हमेशा आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंस वैंस सर्च करें और उनके अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें। स्टे ऑन द रोड रिपोर्ट, श्रेय देना ज़रूरी है। ये रिसर्च यूके के उन बिजनेसेस में 500 सीनियर फैसला लेने वालों के बीच की गई है जहां वैन का इस्तेमाल बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा जानकारी के लिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर जाएं।
1: Gulliyan, gulliyan, kummi, te pehrein ye juttiyan vi kasi gayan par sasta sona nahi miliya. Oh, te tu sach chache kol jao na. Chacha, kehda chacha? Chacha, jeweler Oak Lane, Bradford 9 Alley, jinna hai special offer kandi mari. Nakkanati lai sirf do paundana. Kanas lane na, ik paund. Chhapan te bangani koi mazduri nahi. Pya shaadi ne zevra par special discount hai. Te je tu sa purana sona bechna hai, te bahut change rate par dene ne. Ek wari fir dasso, kehdi gali, kehda pata? Chacha, jeweler Oak Lane, Bradford 9, telephone 01274-488-935.
2: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

मौसम जैसा भी हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने खूबसूरत गीतों के साथ आपके दिल के मौसम को खुशगवार बना सकूं और आपको खुश कर सकूं। और आप जिस मूड में भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे गीत सुनकर आपका मूड जरूर चेंज हो जाएगा और आप भी खो जाएंगे इस खूबसूरत गीत में और भूल जाएंगे अपने सब कुछ, जो कुछ भी आप कर रहे थे या जो कुछ भी आपके दिल में था उसे भूल भाल कर आप हमारे गीतों में खो जाएं, ये मुझे यकीन है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में, और इसके अलावा आप हमें डीएबी पे सुनते हैं, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, लीड्स और ईस्ट लंकाशायर के इलाकों में, और उसके अलावा मिल्टन कीन्स में भी आप हमें सुन पाते हैं। 100.6 एफएम पे आप हमें सुन सकते हैं कालदरदेव के इलाके में और इर्द-गिर्द के इलाके में, और आपके जरिए जो आप डाउनलोड कर सकते हैं आप स्टोर से, उसके आप हमें 2400 घंटे जहां चाहें, जब चाहें, जिस वक्त आपका जी चाहे आप सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन सकते हैं।

0: station, radio station in the world. Sunrise Radio. बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

हाँ जी, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो को और शहनाज मंसूर के साथ। तो ऐसा है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी गीत हों आपकी पसंद के मुताबिक हों, लेकिन बास दफे हो जाता है कि आपकी फरमाइशी गीत हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, जिसके लिए हमेशा हमें इस बात का मलाल रहता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि गीत आपकी पसंद के मुताबिक हों और जो भी आवाज़ें आपको बहुत पसंद हैं उसी आवाज़ में आपको गीत सुनाए जाए। हमारी बेहद कोशिश होती है कि गीत आपके मायार पे पूरे उतरें और आपका दिल भी खुश हो और हम भी प्रोग्राम को इंजॉय कर सके आपके साथ साथ।

प्रोग्राम, खूबसूरत गीत और खूबसूरत है आपका साथ भी। और हमेशा सालों से आपके पास आते हैं हम, और आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हमेशा हमें मिलती हैं, और आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आपके पास आए हैं। एक बार फिर से मौका मिला है आपके साथ मिल बैठने का, आपके साथ गीत और खुशियां बांटने का। तो मुझे यकीन है कि आप आज भी अपने प्यार और अपनी दुआओं से हमें नवाजते रहेंगे, और यूं ही हमारा साथ हमेशा निभाते रहेंगे जैसा कि शुरू से निभाते आए हैं। और इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि आज आए हैं तो आपका प्यार और आपकी दुआएं भी जरूर पाएंगे। शुक्रिया।

कुछ मुस्कुरा के सा किया, चूम के कुछ संग के कुछ मुस्कुरा के सा किया, इनकार कर दे पर जरा नजरा मिला के सा किया, अपने में खाने जो कुछ भूल के फड़ा दे सा किया, अपने में खाने जो कुछ भूल के फड़ा दे सा किया, ते फिर मेरी याद जो भूल जा फड़ा के।

आखिरी हिस्से में हमने कदम रखा है। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है जी आया ने खुश आमदीद वेलकम। अभी तक साथ निभाने का, हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। हमारा और आपका साथ बरसों से चला आ रहा है, आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हम पाते आ रहे हैं और अब तो इसकी आदत सी हो गई है। आपका आना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर खुदा ना खास्ता आप कभी ना आए किसी वजह से तो आपकी कमी बहुत महसूस होती है। तो खुदा रहा ऐसा मत कीजिए, जब भी आपको मौका मिले ज़रूर आइएगा और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और अपनी खैरियत से आगाह करते रहिएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपकी दुआएं और आपका साथ हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमेशा हमेशा आप ही के साथ मज़ा आता है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का।

किस्मत का लिखा हम मिटा नहीं सकते, अनहोनी को होनी बना नहीं सकते। जमाने में हस्पे आरजू हम किसी को चाह तो सकते हैं मगर पा नहीं सकते। जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, जो रखते हैं दिल के दरीचों को बंद, वो खुद किसी दिल में समा नहीं सकते। जितना भी इसको तराश कर लो मगर, जितना भी इसको तराश कर लो मगर, पत्थर को हीरा बना नहीं सकते। ये एक हकीकत है कि इश्क और सुकून कभी दिल में एक साथ समा नहीं सकते।

आज का साथ और आज की मुलाकात बहुत खूबसूरत रही, क्योंकि आप हमारे साथी थे, आप हमारे हम सफर थे और आपने इस शो को, इस साथ को, इस मुलाकात को बहुत खूबसूरत बनाया, जिसके लिए मैं आपकी मशकूर ममनून हूँ। रिश्ते सलामत रहे, यादें बाकी रहें, तो मिलते रहेंगे सनराइज रेडियो पर। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आपकी ज़िंदगी के हर लम्हे को खुदा ताला खैर अफियत अता फरमाए, खुशी नसीब करे। आमीन। खुदा हाफिज। अल्लाह ने के बान। गुड बाय।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
3: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
3: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274-733-732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: No, sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: गलियां गलियां घूमी ते पैरें ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
6: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
5: चाचा केड़ा चाचा?
6: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
6: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first

0: 0243 or email sales@sunriseradio.fm.
1: लेफ्ट राइट पर थम जवान पीछे से गाना गाएगा।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर आपका मेहज़बान मौलाना फजलदाद। और ब्रेक से पहले मैं ये बातें अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी कामयाबी जो है दीन के अंदर रखी है, और जब तक इंसान दीन को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत के अंदर तो उसको सुकून देंगे ही देंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया के अंदर भी सुकून नसीब करते हैं। ये एक 100% हमारा ईमान है कि दीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी रखी हुई है। दीन अगर बूढ़ों के अंदर आए वो शख्स भी कामयाब, कोई जवान आदमी है उसकी ज़िंदगी के अंदर अगर दीन आए वो शख्स भी कामयाब है, चाहे मर्द हों चाहे औरत हों, बच्चे हों बूढ़े हों, बहर सूरत एवरीबडी हु वांट्स सक्सेस देन अल्लाह सुबहानहु व तआला हैज़ गिवन सक्सेस इन हिज दीन। दीन ही के अंदर बाय फॉलोइंग दीन बाय फॉलोइंग इस्लाम अल्लाह सुबहानहु व तआला विल ग्रांट यू सक्सेस। कामयाबी इसी के अंदर है, और जिसने दीन और ईमान को कबूल नहीं किया और अपने ज़िंदगी उसके मुताबिक चलाई नहीं तो उसकी कामयाबी का कोई गारंटी नहीं है। There's no guarantee that person will be successful in the dunya and the आखिरा। ज़ाहिरी तौर पर दुनिया के अंदर बाज़ लोग आपको लगेंगे कि इस शख्स ने दुनियावी लिहाज से हो सकता है कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन अगर वो दीन पर अमल नहीं कर रहा तो यकीन करो उसके दिल के अंदर सुकून नहीं होगा। That person who is not acting upon deen fully and who doesn't have iman in Allah and is not following the beloved ways of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that person on the face of it may seem that person is successful, it may seem that this person is happy, it may seem that this person is in peace, but if you go deep down the reality will be that person will not be in peace, that person will not be 100% happy, and that person will not be successful. It may seem that this person is successful, because one of the important things I have realized in life and I have experienced with people is the amount of money is not the marker of success in your life. एक चीज मैंने तजर्बे से देखी है जिंदगी के अंदर कि आपकी माल, आपके माल की मकदार, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के अच्छा होना, ये अलामत नहीं है इंसान की कामयाबी की। कितने ऐसे हैं कि उनके पास लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों पाउंड हैं, करोड़ों डॉलर हैं, जो भी करेंसी आप ले लें, लेकिन उनके दिल के अंदर सुकून नहीं है। यू मस्ट हैव विटनेस एंड आई हैव सर्टेनली विटनेस पीपल हु हैव मिलियंस, इन फैक्ट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ वेदर दे आर पाउंड्स, डॉलर्स, रुपीज, टाकास, रियाल्स, द अमाउंट ऑफ और द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी इज नॉट अ मार्कर of that person's respect and is not certainly a marker of that person's success. Us paise ki wajah se usko izzat nahi milti, aur uske baraks, on the contrary, I have seen many people who are financially very very weak. Mali lihaz se wo bahut hi kamzor hain, lekin अल्लाह ने उनको सुकून दिया है, वो बड़े इत्मीनान के साथ हैं, और बाज़ औक़ात वो हकीकी तौर पर दुनिया में के अंदर भी और आखिरी तौर पर भी वो कामयाब हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो
बिल्कुल दुनिया से खुश हैं। कितने ऐसे सहाबा इकराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शागिर्द थे, कितने ऐसे हुए कि उनकी यहाँ अगर सुबह के खाने का सामान होता तो शाम का नहीं, और अगर शाम को वो खाना खा लेते अपने फैमिली के साथ तो सुबह उनको पता नहीं कि उनको मिलेगा या नहीं। यह सुबह के खाने पीने की उनके पास गारंटी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया के कामयाब तरीन लोग थे, दुनिया के अंदर सुकून वाले थे, बड़े सुकून इत्मीनान के साथ थे, और दुनिया के अंदर कामयाबी भी उनको मिली, आखिरत के अंदर उन लोगों की कामयाबी है ही है। ये तो रहे चलो सहाबा इकराम जो नबी के शागिर्द थे, उनके बाद ताबईन, उनके बाद तबे ताबईन, बल्कि आजकल के दौर के अंदर भी कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि उनके पास इतना ही खाना पीना होता है कि सुबह खा लिया, अब शाम को किसी ने दे दिया तो खा लिया, नींद उनको इतने सुकून के साथ आती है कि बाज़ औक़ात बाहर भी अगर उनको लिटा दें उनको नींद आ जाती है, उनको किसी किस्म की फ़िक्र नहीं, ना उनको बिल्स की फ़िक्र है, ना उनको किसी किस्म की फ़िक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कोई ना कोई तरीके से उनके लिए बंदोबस्त कर देते हैं। So many people I have witnessed that are very weak financially, yet their peace is such that if they were to lay down even outside under the open sky, they will just go to sleep. They will have a peaceful sleep. And there's others who may be financially very, very, very well off. They have a business after a business after a business. Sometimes they have 50 to 100 employees and their business is flourishing, yet they are not at peace. In one meeting, into another meeting, trying to convince their suppliers to give them cheaper products, and then going to their clients and trying to convince them and win them over, win their contracts over, going home, and when it's time to sleep, when it's time to rest, their mind is still in

سكون حاصل. It's not necessary that you are immersing yourself in the dunya to a great extent and you feel that you will get peace and tranquility and sukoon with that. That's not necessary. There will be times that that may be the cause of your nervousness, of your anxiousness, your anxiety. Your stress and your tension can sometimes come because of the excess of wealth. Maal ki kasrat ki wajah se baz aukaat insaan ko ek mustaqil pareshani ho jati hai. Main ye nahi kehta hu ki maal kamana nahi chahiye. I'm not saying that you shouldn't strive for wealth and you shouldn't work. No, I'm not saying that. I'm saying you should do that. But the point I want to make is some people have this mentality that the more wealth I have, jitni maliyat meri zyada hogi, baaz logon ke zehen ke andar ye baat aati hai, to wo ye samajhte hain itne zyada sukoon hoga. Aur har ek ki zehen ke andar ek dusri baat hoti hai, there's another thing, and they say, you know what, let me accumulate enough so that when I am old and I can't work any longer and I can't accumulate any more, I will have enough of a stock of money, of finances, of income, etc., whatever it may be, jo kuch bhi ho, I will have enough income, then I will not be in need of anybody else. And the extraordinary thing is that you accumulate so much that will be enough for you for the next 20 years, 30 years, and then you don't feel satisfied and you keep accumulating. Ek insaan jama karta hai aur zehen ke andar ye baat hoti hai ki agar budhape ko pahunch gaya to ho sakta hai us waqt kama nahi sakun aur kam se kam mere paas koi na koi aamdani income honi chahiye aur taaki wo mere liye kafi ho. Insaan mushkil se mushkil kaam karta rehta hai aur फिर ये सोचता है कि अब ये काफ़ी है. उसके पास इतना माल इकट्ठा हो जाता है बाज़ औक़ात कि अगले 20-30 साल तक अगर वो कुछ भी ना करे और सिर्फ खाता पीता रहे तो वो तब भी ख़त्म नहीं होता. लेकिन ये इंसान फिर भी इस पर राजी नहीं, थोड़ा सा और कमा लूँ. I'll accumulate some more wealth, I'll put this into business, I'll collect more. और इसी तरह करते करते करते एक वक़्त आता है, कई मरतबा मैंने देखा कि उस शख्स के ऊपर मौत आ जाती है, ज़िंदगी ख़त्म होती है, वो जितना भी माल उसने इकट्ठा किया था उससे वो फ़ायदा नहीं उठा सका. That person could not benefit because the end had come so quickly that this person was not anticipating. इसको अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी जल्दी मौत आ सकती है, ये तैयारी ही नहीं कर रहा था. इसी वजह से फरमाया कि इंसान अपनी मौत की तैयारी करता रहे, किसी वक्त भी आ सकती है और उस वक्त सब कुछ रह जाता है. मुझे याद है हमारे एक दोस्त, उनकी फौतगी हुई कुछ महीने पहले, बल्कि कुछ महीने काफ़ी अरसा पहले, उससे पहले. तो अजीब बात यह हुई कि उसकी फौतगी से 4-5 महीने के बाद मुझे उसके नंबर से कॉल आई. मैंने बड़ा तहज्जुब किया, मैंने कहा यह तो शख्स चला गया दुनिया से, मुझे उसका नंबर डिलीट करना भूल गया. और ये बात भी एक अजीब दिल के अंदर आई कि जो ही इंसान आपके साथ रहता है आप उसको टेक्स्ट करते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, उसका नंबर होता है, लेकिन जो ही वो दुनिया से रुखसत होता है इंसान कितना बेवफा है, फौरन जाकर उसका नंबर डिलीट कर देता है. अजीब. यू स्टे विद अ फ्रेंड और अ पर्सन यू नो, योर कॉलीग, योर नेबर्स फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, यू सेंड द टेक्स्ट, यू रिसीव टेक्स्ट, यू कॉल, दे कॉल, बट व्हेन दिस पर्सन पासेस अवे it's not long before you go down your contact list and you delete that number straight away. Ki ab mujhe iski zarurat hi nahi hogi. You are deleted out of the person's life. So you've passed away.

0: and these people, your friends, they've deleted you from their contact list, from their social media, they've deleted you, we're not going to receive anything, and it's just so light for them. Uske liye unke liye bada hi aasan hai us sab ko delete kar dena. इससे इंसान को पता चलता है कि भाई आपकी ज़िंदगी दूसरों के सामने उसकी कितनी कीमत है. फ्रॉम दैट यू विल नोटिस वॉट वैल्यू यू हैव इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर पीपल. तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि उस दोस्त के फ़ोन से मुझे फ़ोन आया, मैंने उठाया तो उसके बच्चे ने दुआ सलाम की और कहा कि खैर खरीद अंकल. मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक हूँ खैर खरीद. मैंने कहा आपके पास ये नंबर, ये तो आपके वाले साहब का था. उन्होंने कहा हाँ वाले साहब का नंबर था और हमने इस तरह किया कि वो चूँकि उसके इतने महीने बाकी थे उसके कॉन्ट्रैक्ट के और वो ख़त्म नहीं हुआ, तो जब तक ख़त्म ना हो तो हम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे और फिर जब ख़त्म हुआ तो सिम कार्ड हम फेंक देंगे, ख़त्म हो जाएंगे. विल बट एट द मोमेंट आई एम यूजिंग हिज नंबर. खैर उसके साथ बातचीत हुई और पुरानी जो यादें हैं हमने भी याद की, उसने भी यादें की और फिर मैंने उसको बेटा कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो आपके वाले साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे. योर फादर वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इफ़ यू एवर नीड मी यू मोस्ट वेलकम. तो उसने फिर वही बात अजीब कही, उसने कहा आई एम गोना ओनली कीप दिस नंबर अनटिल द कॉन्ट्रैक्ट रन्स आउट, दिस अ ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट और 18 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट, आई कांट रिमेंबर व्हाट ही सेड. पता नहीं साल का या डेढ़ साल का कॉन्ट्रैक्ट है उस फ़ोन के ऊपर. उसने कहा कुछ महीने बाकी हैं तो जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट बाकी है ठीक है, वरना फिर इसको मैं इस नंबर को ख़त्म कर दूंगा, मेरा अपना फ़ोन है, आई हैव माय ओन नंबर फ़ोन नंबर. उसने वो बातें की, हम दोनों खैर खरीद करके फिर बात ख़त्म हो गई. बाद में मैं सोच रहा था, आफ्टरवर्ड्स आई वाज थिंकिंग कि ये शख्स जब फोत हुआ होगा तो उसके जेब के अंदर ये फ़ोन होगा, बिकॉज दिस पर्सन पास्ड अवे and he passed away very quickly, बड़ी जल्दी. तो उसके जेब में उसका फ़ोन होगा, he must have had the phone in his pocket. उसकी गाड़ी की चाबियाँ हमेशा उसके साथ रहती थी, फ़ोन और चाबियाँ मैं उस शख्स को अच्छी तरह जानता हूँ, दोनों इकट्ठे रखते थे. मेरे पास आते घर पर कभी या हमारी मुलाकात होती तो टेबल के ऊपर he would place the phone and then he would have his car keys there. It was quite an expensive car. गाड़ी की चाबियाँ और फ़ोन दोनों इकट्ठा रख देता और हम बातें चीतें करते, चाय वाय पीते और फिर उन दोनों चीज़ों को उठाकर ही वुड गो. किधर मीटिंग होती तो वो दोनों चीज़ें चाबियां भी और फ़ोन भी दोनों रख लेता. एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज कार कीज, इट वाज अ ब्लैक फॉब विद ए रिमोट कंट्रोल टू ओपन द कार. तो मैं सोच रहा था, आई बिगन थिंकिंग, आई थॉट he must have had the phone in his pocket and then he in his pocket he must have also had the keys, the car keys, uski gaadi ki chabi bhi hongi. ab bechara wo jab faut hua uske kapde utare, uske jeb ke andar jo wallet tha jiske andar uska driving license, uske paise wagaira jitne bhi the wo wallet bhi nikal diya, uska phone bhi nikal diya, uski chabiyan bhi nikal di, phone ek bete ne le liya. जो चाबियां हैं वो पता नहीं किधर गई होंगी, वो भी किसी बेटी ने या बेटे ने या किसी ने ले ली होंगी, वाइफ ने ले ली होंगी. वो गाड़ी चला रही हैं, पैसे जो होंगे वो निकाल कर, अब अल्लाह बेहतर जानते हैं उन्होंने क्या किया होगा, हाया तकसीम कर दिए, खर्चा कर दिए, whether they've given it to charity only Allah knows. I didn't ask, I didn't think it appropriate to ask. लेकिन मैं सोच रहा था कि ये वो शख्स कि जब भी बैठता बड़े रोब के साथ बातचीत करता, फ़ोन उठाता, एक फ़ोन कॉल के ज़रिए जिसको भी फ़ोन करता वो कहते कि ठीक है आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम देयर फॉर यू. और ये ख़ुद भी ऐसे था कि इफ़ एनीबडी आस्क हिज असिस्टेंस और हेल्प ही वुड गो देयर. लेकिन अब उसकी हालत ये है कि उसके बेटा कह रहा है कि कपल ऑफ मंथ्स जो बाकी हैं, कुछ महीने जो बाकी हैं वो ख़त्म हुए, फिर इस नंबर को भी ख़त्म कर देंगे. इन अदर वर्ड्स द फ्यू remaining memories of his, उसकी कुछ यादाशें वो भी ख़त्म हो जाएंगी. एक वक्त आएगा कि मेरे साथ भी आपके साथ भी इसी तरह ही होगा कि कहेंगे भाई फलां शख्स फौत हो गए हैं, द पर्सन इज पास्ड अवे, इसकी जेब खाली करो, ये कुर्ता उतारो, टेक दिस शर्ट, टेक दिस सूट, व्हाटएवर यू मे बी वेयरिंग, टेक दिस ऑफ, गुसल के लिए ले जाओ, टेक हिम फॉर द बाथ एंड श्राउड हिम इन वन और टू डिफरेंट क्लॉथ्स, जो कफन के कपड़े हैं, द क्लॉथ ऑफ कफन, रैप हिम अप इन देयर, और जाकर जनाजा पढ़कर उसको अपने कब्र के अंदर जाकर रख दो. प्रे हिज जनाजा एंड प्लेस हिम इन टू द ग्रेव, इट्स ऑल फिनिश्ड. अ फ्यू डेज लेटर, Nobody even knows, or nobody's even talking about, other than the very immediate friends or the immediate family. तो जाना तो है दुनिया से हर एक को, लेकिन ये ऐसी चीज है कि उसकी तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम होती है. ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आकर इस मौजू के ऊपर अगर आप भी बातचीत करना चाहते हैं, if you want to give a few examples, or you want to give some nasihat, or you want to ask a question iske bare mein, ya koi aur mauzu ho, to you're most welcome. Hamare studio ka number 01274 306666, 01274 306666. Break ki taraf jaate hain, lekin jaise hamesha main darkhast kiya karta hu ki break ke dauran aap phone na kare, break ke baad, kyunki break ke dauran, commercial break ke dauran हम फिर फ़ोन नहीं उठा सकते. मैं हूं आपका मेज़बान मौलाना फजलदाद, और ये है सनराइज रेडियो.
1: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है, और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है. हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं, और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है. हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें.
0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर आपका मेहज़बान मौलाना फजलदाद, और ये है सनराइज रेडियो 103.2 FM, 100.6 FM. आप फ़ोन इन कर सकते हैं, हमारी स्टूडियो का नंबर 01274306666. मैं हूँ आपका मेज़बान मौलाना फजलदाद. हर जुमा की शाम को हमारा ये प्रोग्राम होता है. आई एम योर होस्ट मौलाना फजलदाद, एंड दिस इज़ आवर वीकली सेशन एवरी फ्राइडे इवनिंग्स बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock UK टाइम. अच्छा, एक दूसरी चीज़ जिसकी तरफ तवज्जो थी उस दिन, मैं वैसे बल्कि आज ही, उस दिन तो नहीं, आज ही मैं न्यूज़ के अंदर पढ़ रहा था, और ये BBC वालों का न्यूज़ है, और आपको आज की तारीख 4th of September, फ्राइडे 4th of September, और उसके अंदर उन्होंने हेडलाइंस लिखी है, स्टॉक अप ऑन फूड टू प्रिपेयर फॉर एक्सट्रीम वेदर मिनिस्टर सेज. बड़ी अजीब खबर कि स्टॉक अप ऑन फूड टू प्रिपेयर फॉर एक्सट्रीम वेदर द मिनिस्टर सेज. और फिर आगे वो कह रहे हैं कि जो एनवायरमेंट सेक्रेटरी है डेम एंजेला ईगल, told the Guardian the powerful natural climate phenomenon will lead to more extreme storms in this country. Aur fir aage wo kehte hain, we're about to experience probably the largest El Nino that has ever been seen, and that will lead to drier summers, wetter winters and more extreme storms in this country. Aur baaki to kehne ka maqsad wo ye kehna chahte hain, मिनिस्टर होने की हैसियत से हुकूमत के अंदर उनका बड़ा ही मर्तबा होता है, और उनकी जो बात होती है वो नापी तोली होती है. उनको उनके इर्द गिर्द जो एडवाइजर्स होते हैं वो एडवाइस देते हैं. तो ये मिनिस्टर कह रही हैं कि आप ऐसे करें कि खाने पीने का अपने यहाँ बंदोबस्त कर लो, क्योंकि आगे सख्त मौसम आ रहा है. उनका एक्सट्रीम वेदर से क्या मतलब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बारिशें या बहुत ज़्यादा सख्त सर्दियाँ या एक्सट्रीम वेदर कुड बी एनीथिंग रियली इट कुड बी एक्सट्रीम हीट एक्सट्रीम कोल्ड इट कुड बी एक्सट्रीम वेटनेस बहुत ज़्यादा बारिशें बहुत ज़्यादा बर्फ बहुत ज़्यादा गर्मी कोई भी चीज़ हो सकती है उन्होंने पूरी तफसील इसको तो नहीं बतलाई लेकिन इतना बतलाया है और ये यूके का न्यूज़ है और बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया है मतलब आखिर उनकी इसके पीछे कोई रिसर्च होगी तो इसके बारे में अगर आप कोई बातचीत करना चाहते हैं या अपनी राय देना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम आप इसके अंदर फ़ोन इन करके इसके बारे में भी क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज दिन के दौरान इसके बारे में बातचीत करते हुए मैंने सुना और सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी बातें की मैंने तो बहुत सारी पढ़ी बहुत सारी कुछ नेगेटिव्स कोई पॉजिटिव्स लेकिन यहाँ मैं उसको न पॉजिटिव्स को न नेगेटिव्स को बतलाने चाहता हूँ सिर्फ आपके सामने एक ख़बर है उसकी जो हेडलाइंस हैं वो आपके सामने पढ़ दी अब आपका इसके बारे में क्या नज़रिया क्या ख्याल है कि बाज़ लोग कह रहे हैं Some people are saying that this is just scaremongering. That's what some people say. And other people are saying if a minister of the country is saying, especially minister in the UK government, and a minister is somebody of a high status, and usually they have people around them, and especially if it's somebody of a status, like you say, an environment secretary, they have advisors around them and they make sure they whatever they say it is backed up by evidence and a lot of this talk I bring this topic up towards the end because I thought I'd bring it to your attention what do you think about this do you think it could be true that we really need to stock up or is it like some people are saying on the social media that this is scaremongering or do you think there might be a reality to it but not as much or there may be 100% what's your opinion about this and that's why although I've read a lot about it during the day some negative comments some positive comments I don't want to focus on any of those I've just read the headline to yourself from the BBC today is Friday the 4th of September 2026 and the BBC headlines are stock up on food to prepare for extreme weather minister says that's what a minister said so what's your thoughts about this how should we do it what should we do what kind of foods should we stock up on etc so और तो मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग फर्दर एंड आई डोंट वॉन्ट टू अस्यूम एनीथिंग आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनी ऑफ माई ओपिनियंस बट आई जस्ट थॉट आई पुट दिस इनटू द प्रेजेंस ऑफ योरसेल्व्स आप लोगों के सामने ताकि आप भी इसके बारे में सोच लें कि वाकई अगर इस तरह हालात हों तो हमें इसके बारे में तैयारी तो करनी है But on the same hand, we don't want people panic buying and that creates a natural confusion and natural hysteria amongst people. इस तरह भी तो नहीं है कि मुझे याद है एक ज़माने के अंदर कि गालिबन कोविड का ज़माना था या उससे पहले कि लोग जो है वो स्टॉक करना शुरू कर दिए और नॉर्मली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में तमाम सुपरमार्केट में आती हैं अब जब लोगों को थोड़ा सा खौफ हुआ कि हो सकता है ये आइटम ख़त्म हो जाए और मुझे अभी भी याद है वो टॉयलेट पेपर्स थे तो हर फैमिली ने थोड़े से टॉयलेट पेपर नहीं बल्कि कई कई कई बॉक्सेस ले लिए कि अगले तीन तीन महीनों के लिए हमें काफ़ी हो अब उसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी सुपर मार्केट्स थे इर्द गिर्द उन तमाम की शेल्फों से वो ख़त्म हुए अब जब लोगों ने देखा कि ये दीगर लोग ले रहे हैं तो उनको डर लगा उन्होंने कहा कि जब भी ये शेल्फ पर आए जितना हो सके मैं सब कुछ ले लूं। दूसरों ने देखा व्हेन वन पर्सन बिगन पैनिक बाइंग एंड थिंकिंग टू देमसेल्व्स this toilet paper I must stock up in case there's a shortage. They bought boxes and boxes. When people came to shop and they wanted, they noticed this is missing from the shelves, and they brought it from the warehouses as well. And they thought, you know what? Let's buy. For the next 2-3 months, we don't know whether we'll get a chance. And when hundreds of people began panic buying, it was depleting not only from the shop floor, but also from the shop storage houses. और लोगों की यहाँ घरों के अंदर बड़ी मकदार में था, लेकिन कुछ लोगों को मिला, बहुत सारे लोगों को वो चीज़ मिली नहीं, और उसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर, पूरे इलाके के अंदर नुकसान होना शुरू हो गया. Then it began to the panic buying. It creates this hysteria, this fear. So that's why one of the things we have to be very careful about is panic buying or stocking for future in large amounts. It will naturally have an effect upon other people. दूसरे लोगों के ऊपर इसका ज़रूर असर होगा. So I think the media and the social media have to be very careful when public are informed of these sort of situations. इस किस्म के जब न्यूज़ उनके सामने आए, तो जो मीडिया है या सोशल मीडिया है, उनको बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी समझदारी से और मच्योर अंदाज के अंदर काम लेना होगा, वरना ऐसा ना हो कि पैनिक बाइंग की वजह से कुछ लोगों को बहुत सारा मिल जाए और अक्सर लोग जो हैं वो उससे महरूम हो जाएं. बिकॉज इन हिस्टेरिया एंड इन पैनिक बाइंग सर्टन पीपल विल स्टॉक अप लार्ज अमाउंट्स, बट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल मे इवन बी डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक्स. और ये हुआ है इस मुल्क के अंदर. It's happened in this country. I remember it very, very, very, very clearly. ऐसे करते हैं, ब्रेक का वक्त है, मुख्तसर ब्रेक करके फिर आखिरी मैसेज देकर इस सेशन को ख़त्म कर लेते हैं. फिलहाल ब्रेक की तरफ. The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: मम्मी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।